0: भैया हमरा हाल का है।
1: बताए दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।
2: का तुम का बताई, अब का समझाई।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भार कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी उधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान।

0: राणा जी खबर पक्को है, वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

0: क्या हुआ माया?
1: डर लग रहा है, तुम्हें कुछ हो गया तो?
0: मुझे? सिली गर्ल, मुझे क्या होगा? दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती।

दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन

ठाकुर विक्रम सिंह के कदम जिन राहों पर चल पड़े हैं, उन राहों पर घर जैसी कोई चीज नहीं। उसकी जिंदगी एक तूफानी नदी है जो दन दनाती हुई एक गहरी खाई की तरफ जा रही है। ऐसे राही को भूल जाना ही अच्छा है।

ये मौत का शहर है जिन्हा, इस शहर की गलियों में अंधेरा ही अंधेरा है, और इस अंधेरे में एक दिन तेरे सुमेर को गुम हो जाना है। इससे पहले कि मैं इस अंधेरे में गुम हो जाऊं, मैं तेरी जीती जागती सांस लेती तस्वीर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुझे वापस जाना होगा जिन्ना, तुझे वापस जाना होगा।

0: सिर्फ कहूं
1: या नेक्स्ट सन इज गोना बी फादर्स डे
0: मेरा नाम करेगा रोशन
1: सो वंस अगेन आई थैंक यू फोक्स फॉर दिस प्लेटफॉर्म इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर विद यू सिंस द रेडियो स्टेशन स्टार्टेड देयर गोना बी चेंजेस कमिंग अप सून सो प्लीज फॉलो एनटीएन एंड कीप ऑन लिसनिंग

0: मैं
1: द गाइस इन ब्रुकलिन हैड अ नाइस कुक अप लास्ट नाइट दे मिसिंग क्लिफ रिचर्ड्स
0: के पास ही है मेरी
1: बिग इट अप फॉर डेबी द किटी गर्ल्स इन द हाउस यू नो आई लव संडेस व्हेन यू हियर दिस म्यूजिक इट्स लाइक क्रेजी I wish I was at a party right now. Paris is in a party right now, big it up to himself and the crew.

0: शिमारू के नए वीडियोस के लिए
1: ऑलराइट, इट्स 14 आवर्स 27 इन गयाना, वी आर रॉकिंग ऑन अ संडे आफ्टरनून।
2: कहते डरती हो दिल में मरती हो जाने मन।
1: गुड आफ्टरनून 11 ऑन रेडियो। हाय गुड आफ्टरनून, यू लाइव।
3: कैसे हो? गुड आफ्टरनून।
1: हेलो डियर,
3: माय यू जस्ट रेडी टू स्टोरी ऑल अबाउट।
1: ओके।
3: फर्स्ट फर्स्ट द फर्स्ट No, it's Hollywood.

0: पिताजी?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।